0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा ले, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।
2: Forget coffee, chai. He has got your morning kick. UAE's number one way to rise and shine. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Zulekha Hospital.
3: Good morning, it's past 6 a.m. on this Monday ki subah, 29th of June. This is the perfect way to start not just your day, but your working week. Monday ki subah, but it is just two days away from July, which means ki aadha saal khatam hone mein sirf do din bache hue hain. Yaar, kaisa raha pehla half? इंटरवल के पहले का पहला हिस्सा, इसके बारे में बात करने वाले इन जस्ट अ वाइल। दिस इज द शो दैट गेट्स यू गोइंग, इट्स कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट, राइट हियर ऑन बिग 106.2, अ पार्ट ऑफ द फनी शो नेटवर्क।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: इफ यू कंप्लेनिंग अबाउट योर स्लीप योर रूटीन्स, नैना तो कोई कसूर नहीं है यार, ये आदतों का कसूर है।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: व्हाई वी टॉकिंग अबाउट स्लीप ऑन अ शो दैट इज मेंट टू डू एग्जैक्टली द ऑपोजिट थिंग व्हिच इज लाइक ड्राइव योर स्लीप अवे बिकॉज ऑफ रिसर्च। साइंटिस्ट ने जम के डट के रिसर्च किया ऑन दिस गाय कॉल्ड रॉजर फेडरर। ऑफ कोर्स यू नो रॉजर फेडरर, वन ऑफ द मोस्ट इफ नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। ही हैड वन नॉन नेगोशिएबल। लोगों ने पूछा, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया इस बात पे कि यार ये इतना सक्सेसफुल आदमी कैसे हो सकता है यार, हाउ कैन ही बी लाइक दिस ग्रैंड स्लैम विनिंग मशीन। करना पड़ेगा रिसर्च, करना पड़ेगा, इसके बाद जांच पड़ताल करके रहूंगा मैं। सो उन्होंने पता किया दैट रॉजर फेडरर हैड वन नॉन नेगोशिएबल। आई मीन ही वुड हैव द ओकेजनल स्वीट ऑल्सो, ही हैड द ओकेजनल पिज्जा स्लाइस ऑल्सो एटसेट्रा, बट वन थिंग दैट ही डिड नॉट नेगोशिएट ऑन, मतलब ये तो डेफिनेट टस से मस नहीं हूंगा मैं, एंड दैट वॉज कि हर रात ही स्लेप्ट फॉर 12 आवर्स एवरी सिंगल नाइट फॉर 20 ईयर्स। उनके कोचेज ने इसको डॉक्यूमेंट किया एज हिज सिंगल नॉन नेगोशिएबल। नाउ रॉजर फेडरर वन 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, कंपीटेड द हाईएस्ट लेवल ऑफ टेनिस फॉर 24 ईयर्स, एंड इन दैट एंटायरिटी ऑफ दैट करियर 12 घंटे की नींद एवरी सिंगल नाइट, 8 नहीं 9 नहीं, पूरे के पूरे 12। मतलब ये जो 12 घंटे की स्लीप, ये नींद और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, बाकी जो भी करना है कर लो यार। एंड सक्सेसफुल पर्सन जो होते हैं दे स्लीप फार बेटर, दैट इज वॉट साइंस इज सेइंग। आप बताइए, कंपेयर टू रॉजर फेडरर लेस, हाउ मच लेस? जग से लाज, लेटेस्ट सुपर हिट फ्रॉम कॉकटेल 2 कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड। गुड मॉर्निंग
1: बिग 106.2।

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: It's game on with Big Ticket.
2: A guaranteed 25 million dirham prize.
1: 5 winners of 1 million dirhams each.
2: Plus weekly draws.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: Insurersmarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. Insurancemarket.ae.
5: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट.
10: मॉर्निंग साहब, इसका 13 मिनट, 33 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. ह्यूमिडिटी आज क्वाइट हाई, 70%, पर विंड्स ब्लोइंग एट जस्ट 3 km/h. हाई ऑफ 36, लोज ऑफ 32 डिग्रीज.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2. बिग 106.2. सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae.

0: सारे के सारे डिजाइनर्स, अर्बन प्लानर्स, अगर आप आर्किटेक्ट वगैरह हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स, सो एनीथिंग टू डू विद डिजाइन और यू नो डेवलपिंग अ स्पेस, देन बल्ले बल्ले हो गए भी आपकी तो.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Because you have a chance to win 200,000 dirhams, bhai. How does that sound? 200,000 dirhams, आप जीत सकते हैं. कैसे? AI designed park आ रहा है. दुनिया का सबसे पहला AI designed park. I mean the number of times that I say दुनिया का सबसे पहला is absolutely amazing here in Dubai, huh? So among three major new projects that were announced last week, one of them is that दुनिया का world's first AI designed park. AI की मदद से सारा का सारा पार्क डिजाइन होने वाला है, which means कि भाई चांदी चांदी होगी. 200,000 dirhams अगर आप जीतना चाहते हैं, you could contribute to this process. Yeah, you can take up the challenge to redesign Al Safa 2 park. So all the participants are encouraged to use AI. Yeah, that is the main thing, that is the key. AI की मदद से design process का आप हिस्सा बन सकते हैं, analyzing the site से लेकर utility of the space to developing concepts, testing scenarios as well. So if you're an urban planner, if you're a student as well, yeah, it's open to students, there's no age limit here. Designers, artificial intelligence के innovator अगर आप हैं, if you've been like 5-6-8 महीने से आप AI की दुनिया में घिसाई कर रहे हैं, तो दिस इज फॉर यू. या 200,000 dirhams, नॉट बैड एट ऑल. Al Safa पार्क 2, Al Safa 2 पार्क जो है उसको री इमेजिन आपको करना है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. टू गेट दोज प्रॉम्प्ट्स गोइंग एंड यू नो गेट क्रैकिंग.
2: तो ये लगा क्यों ना तुझे.
0: विशाल मिश्रा का ये अमेजिंग सॉन्ग कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.
1: बिग 106.2.

0: एक सुपर हिट सॉन्ग एंड मेड अ डांडिया वर्जन ऑफ इट, दैट्स व्हाट दे हैव डन. धमाल 4 का ये गाना.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Of course, a huge moment for somebody like Sanju Rathod, jo ki matlab kahan se kahan pahunch gaya in the last couple of years only. He's come up with banger after banger, and aajkal pata hai na, it's not about any of the charts. It doesn't have to be a chart busting track here. Given a choice, कि अगर आपको किसी चार्ट के टॉप करना है या फिर डू यू वांट टू गेट वायरल ऑन इंस्टाग्राम, पीपल विल ऑब्वियसली चूज द लैटर बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ स्टिकेबिलिटी यार. उसमें आपने गाना सुन लिया, ये कौन सा गाना है यार. सो या दैट्स व्हाट हैपेंड विद संजू राठौड़ के कपल ऑफ सॉन्ग, जिसमें कि ये साड़ी भी था एंड बिकेम सच अ ह्यूज हिट दैट धमाल 4 का हिस्सा हो गया है वो. सो कैन यू इमेजिन यार, संजू राठौड़ गेट्स टू काइंड ऑफ शेयर स्क्रीन स्पेस विद द पीपल रितेश देशमुख एंड आई एम श्योर द मराठी कनेक्शन आउट देयर. रितेश इज क्वाइट इंस्ट्रूमेंटल गेटिंग संजू राठौड़ सॉन्ग इन Dhamaal 4. So I mean, of course, he's over the moon. It's like one of the biggest, if not the biggest moment so far in his abhi tak short little career, but plenty more coming up. Sanju Rathod is now a Bollywood voice. Amazing. Another example ke sapne sach hote hain. Here's Mascara from Main Wapas Aunga, AR Rahman ka music, Vedang Raina ki awaaz. This is the Big Breakfast with me, Sid.

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए GoChat Coins. इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए. GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही. देख.

0: एक होती है करारी शिकस्त, एक होती है पेनफुल लॉस. आई मीन कंबाइन दिस एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट्स व्हाट हैपेंड यस्टरडे.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: आयरलैंड के खिलाफ एक मैच, चलो माइट बी एन एनोमली. दो गेम बैक टू बैक सीरीज व्हाइट वॉश. इट वाज टू मैच T20 सीरीज प्लेड इन आयरलैंड एंड वी लॉस्ट बोथ दोज गेम्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज अ, ऐसा नहीं था कि कोई सेकेंड रंग टीम थी और समथिंग लाइक दैट. नो इट वॉजंट. इट हैड ऑल द सुपरस्टार्स दैट वन द वर्ल्ड कप एक्सेप्ट सूर्या वाज नॉट देयर. यू नो ऑल द हिस्ट्री बिहाइंड दैट. बुमराह एंड हार्दिक पांड्या, इनके अलावा देयर वाज एवरीबडी इन देयर. देयर वाज संजू सैमसन, देयर वाज अभिषेक शर्मा, देयर वाज ईशान किशन, राइट, देयर वाज तिलक वर्मा. श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी हैज गॉटन ऑफ टू द वर्स्ट पॉसिबल स्टार्ट एंड नाउ आइसलैंड क्रिकेट ने, या आयरलैंड के इस जीत के बाद आइसलैंड क्रिकेट ने, सिर्फ एक अक्षर का ही फर्क है, दे सेड दैट वी कैन कंफर्म दैट वी डोंट विश टू ऐड गौतम गंभीर टू आवर कोचिंग स्टाफ. ही क्लियरली हैज टैलेंट, दो टैलेंट उसमें है. टू टेक दोज इंडियन प्लेयर्स एंड डिलीवर दोज रिजल्ट्स इन आयरलैंड टेक्स ट्रूली रिमार्केबल गिफ्ट्स. यार whoever is in charge of Iceland cricket ka social media deserves some sort of an award, not a Padma award, but definitely some sort of an award. Sense of humor on point. Share a version of Didi from Dhurandhar the Revenge coming up. Also, hum log khelne wale hain the big summer surprises. The contest is going to change from today. Keep it locked to Big 106.2, a part of the Funny Show Network.
1: Big 106.2.

0: You are listening to Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलरास से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क

0: कभी सोचा आपने? मैंने तो नहीं सोचा कि 34 एक्टर्स जिस फिल्म में हो उसमें कितनी वैनिटी वैंस लगेंगी और पार्किंग लॉट कितना बड़ा होना चाहिए।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: या वेलकम टू जंगल हैज 34 टॉप लाइन एक्टर्स इन इट फ्रॉम बॉलीवुड। 50 वैनिटी वैंस, 250 गाड़ियां, oh my, it had to be like a epic proportion की फिल्म। एंड द फर्स्ट हाफ सुनते हैं, has got laughs of epic proportion, ROFL moments galore, that's what the first half के बारे में रिव्यू मैंने सुना है। it kind of tapers off in the second half बोल दिया मैंने, but yeah, totally worth a watch। मैंने अभी तक देखी नहीं है, and I'm thinking the same thing कि मैंने किया क्या वीकेंड पर। Do you also kind of have this feeling के वीकेंड पे कुछ तो किया लेकिन क्या किया पता नहीं, फ्यास्मी की कोई फिल्म देखी नहीं देखी, दोस्तों से मिले ज़्यादा तो कुछ दोस्तों से मिला भी नहीं, तो मैंने किया कि आई हैव नो आइडिया, आई डोंट इवन, ऑल आई नो इज कि वीकेंड कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जल्दी निकल गया भाई, जो कि हर वीकेंड मुझे लगता ही है। माशूका कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल फ्रॉम कॉकटेल 2, एंड इन केस आपने नहीं किया, कीप व्हाट्सएपिंग 0543091062, BSS स्पेस योर नेम।
1: Participate in the Bollywood Vacay Contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: पता नहीं ये मौका हाथ से कब चला जाए, राइट? सो कीप व्हाट्सएपिंग, डू नॉट टेक दैट रिस्क ऑफ दिस मौका निकलोइंग 0543091062, दैट्स द नंबर, BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस, स्पेस योर नेम। आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज नहीं करना, व्हाट्सएप करना है 0543091062 पर।

0: Yeah, I mean, because the FIFA World Cup is on, इसलिए ज़्यादा लोग इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, but Indian women have crashed out of the World Cup. They have not qualified for the semi-finals.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Yeah, India vs Australia women कल खेला गया था and हार गए हम लोग, but only bright spot was the fact that Ravi Shastri and Virat Kohli were sitting together in the crowd, and as soon as the cameras kind of panned onto them, cheer करने का सिर्फ यही एक मौका था कल. But of course, ये तो कुछ भी नहीं है भाई. Ireland के सामने series whitewash, पहली बार in the history of Indian cricket हुआ है, and you can expect some decisions. I don't know, but selectors भी सोच रहे होंगे, they were tearing their hair. अब करें क्या है? We changed the captain. Shreyas Iyer did so well in the IPL for half of the IPL. उसके बाद देन आई थिंक बस सितारे गर्दिश में चल रहे हैं श्रेयस अय्यर के. यार फुल स्ट्रेंथ टीम, उसके बावजूद पहली बार इन द हिस्ट्री वी बीन वाइट वॉश 2-0. इफ यू थॉट द फर्स्ट गेम जो था इट वाज लाइक अ बिट ऑफ अ चलो ऑड बॉल सिचुएशन कि अभी टीम इज जस्ट गॉटन टुगेदर एंड दे वार्मिंग अप फॉर इंग्लैंड एंड ऑल. नहीं नहीं नहीं नहीं, सेकंड वाला भी हार गए हम लोग. पीपल आर सेइंग व्हाई प्रसिद्ध कृष्णा, आई हैव नो आंसर्स फॉर दैट. बट देन प्रिंस यादव ऑल्सो केम इनटू द सेकंड गेम. बट द बिग डिबेट इज व्हाई नॉट वैभव सूर्यवंशी. भाई क्यों लेकर गए अलग ड्रेसिंग रूम? या यू नो दैट वैभव सूर्यवंशी हैड अ सेपरेट ड्रेसिंग रूम, राइट? बिकॉज वो 15 साल का है एंड ही डजंट क्वालिफाई टू बी ए पार्ट ऑफ द मेन्स ड्रेसिंग रूम बिकॉज वो मास्टर है, मिस्टर नहीं है. सो वाओ, लॉट्स ऑफ ऑफ द फील्ड ड्रामा, लेकिन ऑन द फील्ड ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए यार. अब देखते हैं आगे क्या होता है व्हेन वी एक्चुअली टेक ऑन इंग्लैंड. आप जानते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर. एन अनमिसेबल अपॉर्चुनिटी टू विन अ वंडरफुल स्टेकेशन.
1: Participate in the Bollywood Vacay Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: Yeah, Bollywood Vacay, aapne suna? Yeah, the contest change. Every Monday we have a new, that's the best part about Big Summer Surprise. Every week we have a new contest mechanic, and this time, agar aap Bollywood ke fan hai, of course we are the beat of Bollywood, toh kaun nahi hai Bollywood ka fan? And agar aap vacation, staycation ke fan hai, toh kaun nahi hai bhai? We are especially in the UAE. So Bollywood plus vacation ka ye contest, if you think you'll be able to ace it, do better than the person in conference playing against you, then type out and keep sending that WhatsApp. Kya type karna hai aapko? BSS. For Big Summer Surprises, BSS space dekar apna naam and keep WhatsApping it to 054-309-1062. Number ek baar phir, 054-309-1062.

0: And ये तो आप जानते हैं कि कम समर्स यहाँ यूएई में हम लोग एक ही नाम जपते फिरते हैं, that is a staycation. That's exactly what you stand to win in Bollywood Summer Surprises.
1: Participate in the Bollywood Vacay Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: Well, दो खिलाड़ी जंग के लिए तैयार. On the phone line, let's say good morning. सबसे पहले to Vinita. How are you doing?
2: Hi, friend. I'm good. How are you?
0: Very good. यार क्या हुआ? कुछ तकलीफ? आप बहुत ही ज़्यादा sad sound कर रहे हो यार.
2: I'm good. It's just Monday effect.
0: Okay. It's not me effect, right? Because it can be soul crushing. मैं इतनी एनर्जी दिखा रहा हूँ सामने से, आप बिल्कुल मत डिफ्लेक्ट करे जा रहे हो.
2: No, I'm excited.
0: You're excited? Okay. Try and sound a bit excited as well. All right. So, Vinita, क्या काम करते हो आप या क्या सीन क्या है?
2: I am an IT consultant.
0: IT consultant. अच्छा चलो पूछते हैं कि साध क्या काम करते हैं. साध, गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग सर.
0: क्या ये हुई ना एनर्जी. विनीता जी सीखिए कुछ. साध आप क्या करते हो? वेरी गुड यार. लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन. मतलब मेरा कोई दिन गुजरता ही नहीं आजकल जब कोई लॉजिस्टिक्स का बंदा आ ना जाए फोन पे. एवरी सिंगल डे देयर इज समबडी फ्रॉम लॉजिस्टिक्स कमिंग. तो चलो देखते हैं कि इस कॉन्टेस्ट में आपकी लॉजिस्टिक काम करती है कि नहीं. सो व्हाट्स गोना हैपन, एंड दिस इज अ न्यू कॉन्टेस्ट स्टार्टिंग दिस वीक, सो ध्यान से सुनना ठीक है. मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा एंड आपको सबसे पहले तो एक काम करना है कि मुझे बताना है कि इस गाने की शूटिंग कहाँ पर हुई है. ओके अगर आपको लगता है कि आपको जवाब पता है तो आपको अपना नाम चिल्लाने, लेकिन पहले यू गॉट अटैच बिग टू इट. ऑलराइट, सो साध इफ यू थिंक दैट यू नो द आंसर यू गॉट शाउट
3: बिग साध.
0: या एंड विनीता.
2: बिग विनीता.
0: ऑलराइट, सो आर यू गाइस रेडी?
3: यस.
0: ओके, इन 3, 2, 1 बताओ इस गाने की शूटिंग कौन से कंट्री में हुई है अपार्ट फ्रॉम इंडिया.
4: देखा तो ये जाना सनम.
0: साध.
3: Switzerland
0: is the correct answer. 1-0 in favor of Saad. Buck up, Vinita. Now what's going to happen is I'm going to ask you two more questions, okay? Two more questions about this particular song. It's going to be a best of three. Agar Saad ne ek aur sawal ka jawab de diya, he's going to be the winner and his name goes into the draw. Are you guys ready?
2: Yes.
0: Rules are the same. Yes. Listen to the question. Agar aapko lagta hai ki jawab pata hai, shout big space your name, okay? द क्वेश्चन इज इस गाने में शाहरुख खान की जैकेट का कलर क्या है. बिग साध.
3: ब्लैक.
0: विनीता, डू यू थिंक दैट्स अ करेक्ट आंसर?
2: नो.
0: व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
2: ब्राउन.
0: ब्लैक और ब्राउन के बीच में क्या है सही जवाब? द आंसर इज साध. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर एंड यू आर एंटरिंग टू द फाइनल. जैकेट.
3: थैंक यू.
0: ब्लैक जैकेट दैट शाहरुख खान वॉज वेयरिंग. ब्राउन तो उनका वो टुनटुना था जो यूकेलेली और मैंडोलिन दैट ही वॉज प्लेइंग. बट विनीता थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन द कॉन्टेस्ट. आप मैसेज करते रहो, व्हाट्सएप करते रहो, हु नोज यू कैन यू नो टेक पार्ट इन दिस कॉन्टेस्ट वंस अगेन. ऑलराइट, चलो टेक केयर विनीता. बट साध कैसा लग रहा है मेरे भाई, आपका नाम ड्रॉ में चला गया एंड यू वन स्टेप क्लोजर टू विनिंग दिस फैबुलस स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमायरिड इन रस अल खैमा. ऑन द स्पॉट आपने जीत लिए 2 वॉक्स टिकट्स प्लस एन FNB वाउचर.
3: फीलिंग ग्रेट, जस्ट अ बिट नर्वस ऑन बीइंग ऑन द रेडियो एज़ वेल.
0: अरे क्या नर्वस यार, मतलब इतना कुछ जीत के भी नर्वस. अच्छा गेम शुरू होने के पहले नर्वस नहीं थे, अब बाद में क्या हो रहे हो नर्वस? ये बताओ कि कौन कौन है घर पे?
3: जस्ट मी एंड माय वाइफ.
0: Perfect man, perfect. So it couldn't have been a better start to your summers. हाँ, जाकर movie enjoy करो, FNB voucher enjoy करो. In the meanwhile, draw होगा and we've all got our fingers crossed for you. All right.
3: Hope for it.
0: Take care. That is Saad, हमारे आज के draw entrant है. Fabulous day ahead. आप भी WhatsApp करते रहिए 0543091062. That's the WhatsApp number. Just type out BSS for Big Summer Surprises. BSS space देकर अपना नाम and keep WhatsApping it to that number that I just said 0543091062. Big Summer Surprises been made possible by our presenting sponsors Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almirid, Ras Al Khaimah. Also कल सुबह एक बार फिर on the Big Breakfast I'm going to be playing this game at the same time जहां पर one of you is going to get shortlisted in the lucky draw and also win on the spot movie tickets and an FNB voucher.
1: Big

0: 102, the beat of Bollywood.
1: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Today's weather update. Sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's Sub-Zero Fiesta on refrigerators, ACs, appliances, and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
3: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
4: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
0: द बिग ब्रेकफास्ट ब्रॉट टू यू बाय जेटोर यूएई. ड्राइव योर फ्यूचर. पार्ट ऑफ एलीट ग्रुप होल्डिंग.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट.
7: मॉर्निंग 9:19 ऑन दिस मंडे की सुबह. 35 डिग्रीज सेल्सियस ऑलरेडी. ह्यूमिडिटी एट 59%. इट स्टार्टेड ऑफ विद 75% बाय द वे, सो इट्स मच बेटर नाउ. विंड्स एट 6 km/h. हाईज ऑफ 36 राइट नाउ. लोज ऑफ 32 डिग्रीज सेल्सियस.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: Mango with Ek Dafa Chinnamad mashup right here on Big 106.2. And if you've been thinking about the original welcome, yeah, bilkul natural hai yaar. Welcome to the jungle, although it has nothing to do with the original welcome. Comparisons are natural, na?
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: काफी अच्छा करी by the way. I mean, last reports के हिसाब से some 80 plus crores already उन्होंने कर दिए हैं in the first weekend. I'm talking about Welcome to the Jungle. Ahmed Khan की ये फिल्म है. Does not have Nana Patekar, but आज in the Big Bollywood Quiz, I'm going to ask you about the most famous Nana Patekar dialogue from the first Welcome. Fill in the blanks. You got to tell me, answer a very simple question that I'm going to ask you after you listen to this blank wala dialogue. Isme bahut hi vital sabzi missing hai.
2: Alo, le lo, le lo, alo, le lo.
3: बड़ा कमाल का डायलॉग लिखा.
4: हाँ जी, बोली बोली बोली.
3: सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा.
0: सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा. वॉट दैट इज वॉट आई एम लुकिंग फॉर. दैट द करेक्ट आंसर दैट आई एम लुकिंग फॉर. अगर आपको पता है कि आलू ले लो के बाद वो क्या लेने को कहते हैं नाना पाटेकर, इफ यू नो द नेम ऑफ द सब्जी बट इन द लैंग्वेज दैट ही वॉज टॉकिंग. आलू ले लो के बाद क्या ले लो कहते हैं नाना पाटेकर. गिव मी अ कॉल, लेट मी नो. 800-1062 इज द नंबर. 800-1062 टू विन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज.
1: बिग 106.2.

0: The Big Breakfast brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
1: It's game on with Big Ticket.
2: A guaranteed 25 million dirham prize.
1: 5 winners of 1 million dirhams each.
2: Plus weekly draws.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
5: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
6: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
5: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
6: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
5: चलो चले अलराज।
0: Listen to her every day.
7: Mugambo! खुश हुआ।
8: जुबैर, अगर आपका बर्थडे है, आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा, अब बर्थडे पार्टी में आपने किसी रेस्टोरेंट में पार्टी दी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आप बिल भरोगे कि आपके सारे फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करें?
9: नहीं यार, ऑब्वियसली मेरे को ही बिल भरना पड़ेगा। नो, ऐसा तो कॉन्सेप्ट अपने इधर तो नहीं चलता है।
8: Yeah, it's a very non-desi concept, but it's become very common.
9: Okay.
8: तो आप ऐसी पार्टी में जाओगे?
9: नहीं, ऐसी पार्टी में तो कहाँ, थोड़ी जाना पड़ेगा।

0: भी बिल पे करना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा।
1: आई थिंक दिस इज के लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल इनविटेशन है, क्योंकि फॉर अस इट मींस होस्टिंग पीपल। तो इफ आई एम गोइंग टू योर हाउस, इफ आई एम गोइंग टू अ पार्टी जो आप ऑर्गेनाइज करें, देन आई अज्यूम के यू विल टेक केयर ऑफ इट एंड मैंने सिर्फ एज अ गेस्ट जाना है।
0: ये बोलते अच्छी हॉस्पिटैलिटी में कंसीडर नहीं करा जाएगा।
1: तो मैं जाऊँ इस बर्थडे पार्टी में कि नहीं जाऊँ?
0: नहीं मत जाओ यार, क्यों जाओगे?
1: हाँ अभी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ, जिस हिसाब से मेरा माहौल चल रहा है बैंक अकाउंट से, मैं अपनी बर्थडे पार्टी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी।
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: Morning is 9:33 on the clock. Let's take a look sabse pehle at the capital Abu Dhabi. Aapko halka bulka traffic milne wala hai in Musaffa Industrial and this is heading south. चलते हैं ऑल मजदार सिटी की तरफ, जाता हुआ ट्रैफिक आपको मिलेगा E20 पर एंड खलीफा सिटी सेक्टर 13 पर भी हल्का फुल्का ट्रैफिक। E10 ऑल्सो गोइंग टूवर्ड ईस्टर्न मैंग्रोव्स, यू विल फाइंड 3 से 4 मिनट तक की देर। चलते हैं दुबई शारजा की ओर, सबसे पहले द यूजुअल DLCE दुबई साउथ हेडिंग नॉर्थ, यू फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन ऑन 311, देन द जंक्शन ऑफ 311 एंड 44 एट JVT, एंड देन गोइंग नॉर्थ आज अनयूजुअल ट्रैफिक ऑन 44। दिस इज जैसे आप उम सिक्किम एरिया को क्रॉस करेंगे, दुबई हिल्स मॉल वाला एरिया क्रॉस करके, देयर हैज बीन एन इंसिडेंट आउट देयर बीइंग रिपोर्टेड, सो बी केयरफुल। देयर इज ऑल्सो द यूजुअल 44 का ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3, एंड देन 66 दुबई अलेन रोड पर गोइंग टुवर्ड्स अल जदाफ।
2: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Kajrare, Alisha Chennai, right here on Big 106.2. On the phone line, I've got perhaps the most unique name that I've heard ever.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: I don't even know how to pronounce it. Hi, good morning. What's your name?
2: Hi, good morning. My name is Primalia.
0: Primalia. Can you spell that? It is P-R?
2: P-R-I-M-A-L-I-A.
0: Primalia. P-R-I-M-A-L-I-A. It's such a lovely, unique name. What does it mean?
2: It means first child. It's a Latin word.
0: First child in Latin?
2: Yes.
0: Primalia, that is... बहुत मेहनत की आपके माँ बाप ने यार, कितना रिसर्च किया होगा जस्ट टू नेम यू. वाओ, आई मीन व्हाई लैटिन? हैव यू एवर आस्क्ड योर पेरेंट्स के पापा मम्मी ये क्या क्या लगा रखा है? व्हाई कुडंट यू हैव सिलेक्टेड अ सिंपलर नेम लाइक सुषमा और समथिंग लाइक दैट?
2: यस, आई ऑलवेज आस्क लाइक दैट.
0: बट देन लुक एट द फ्लिप साइड, राइट? आई मीन वी वुडंट बी हैविंग दिस कन्वर्सेशन इफ यू हैड अ कॉमन नेम. याद रहेगा, राइट? आई मीन कि प्रिमालिया, यू हियर इट वंस एंड यू डोंट फॉरगेट इट, करेक्ट?
2: Yes, correct.
0: चलो, लास्ट टाइम मैंने आपको एक सवाल पूछा था. वी प्लेइंग द बिग बॉलीवुड क्विज एंड द ग्रेट नाना पाटेकर, हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेलकम टू द जंगल, ने दो सब्जियां बेची थी. एक तो आलू ले लो, उसके बाद क्या ले लो?
2: और कांदा ले लो.
0: कांदे ले लो, कांग्रेचुलेशन. ऑल थैंक्स टू योर वंडरफुल नेम एंड अ बिट ऑफ कांदे, यू वन टू ओपन मूवी टिकट्स. यू कैन गो एंड वॉच द मूवी ऑफ योर चॉइस एट अ टाइम ऑफ योर चूजिंग.
2: Okay, thank you so much.
0: Take care, Primalia. Lovely name once again, yeah. So that is Primalia, our today's winner. Don't forget, roz subah ye mauka aapke paas to flex some Bollywood muscle and win two open movie tickets in the Big Bollywood Quiz.
1: Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: आपको लग रहा है कि है रेंटल कार तो महंगा होना है, थिंक अगेन. इफ यू थिंक रेंटल कार्स आर एक्सपेंसिव, देन दिस इज डेफिनेटली गोना पुट अ स्माइल ऑन योर फेस. selfdrive.ae के पास सबसे अफोर्डेबल कार रेंटल्स हैं इन द यूएई राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ. बिल्कुल सही सुना आपने, 899 दिरहम्स अ मंथ. एट दिस प्राइस पेइंग मोर जस्ट डज नॉट मेक सेंस, राइट? नो ओनरशिप, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, नो स्ट्रेस. जस्ट पिक योर कार एंड ड्राइव. सर्च कीजिए selfdrive.ae और डाउनलोड द ऐप नाउ. सेल्फ ड्राइव, योर कार, योर प्राइस, योर वे.
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे, बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव? थिंक अगेन, बिकॉज राइट नाउ द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल इन द UAE इज हियर फॉर जस्ट 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy. Big 106.2. That's My Song by E. &

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Hanji, good morning. 10:15 on the big clock. Zohra ke saath ho aap on the big mix. I keep you company until 2. Filhal hum baat kar rahe the about this some very interesting thing. You know, as kids, hamein bahut sari cheeze hamare family members ya dost ya koi na koi hamein keh jata hai, which we think, you know, is true. Ya to kuch cheeze ऐवे ही हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बोली जाती है, कुछ चीज़ें हमें बोली जाती है जस्ट टू स्केयर अस, कुछ चीज़ें हमें बोली जाती है टू मेक अस फील गुड, मेक अस फील हैप्पी. यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल, आई रिमेंबर वन थिंग, जब मैं छोटी थी तो यू नो वो बिलीव करते थे लोग, यू नो टूथ फेरी होती थी. You believe in that? I don't know if you believe in that, but मैंने भी कहीं ये movie या किसी चीज़ में tooth fairy का concept देखा था. And I asked my parents की tooth fairy real होती है कि नहीं, and they said कि होती होगी उस time पे. तो मैंने किया था वो काफ़ी साल तक, अपना tooth निकाल के रखना जब भी टूटता था, thinking कि मुझे gift मिलेंगे, present मिलेंगे. एक आधा बार मेरे मम्मी पापा ने कर दिया था, but उसके बाद they just let it go and I just over time started thinking कि tooth fairy सिर्फ छोटे छोटे बच्चों की wishes पूरी करती है, बड़े होते होते wishes important नहीं होती. बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको बचपन में सुनाई दी गई होंगी which you ended up believing, even growing up you maybe till date believe in that. If ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसमें आप believe करते हो, I have this list in front of me that shatters those beliefs for you. I'm going to take you through those one by one because इसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं which I actually used to think कि सच होंगी, you know. For example, number one, लोग बोलते रहते ना, टीज़ करते रहते, अरे यू हैव गोल्डफिश मेमोरी बिकॉज गोल्डफिश को सिर्फ 3 सेकेंड के लिए चीज़ें याद होती हैं. दैट्स नॉट ट्रू, दे डू नॉट हैव अ 3 सेकेंड मेमोरी. इन फैक्ट दे रिमेंबर थिंग्स फॉर वीक्स और इवन मंथ्स. तो गोल्डफिश की मेमोरी एक्चुअली अच्छी होती है. सो नेक्स्ट टाइम समवन कॉल्स यू गोल्डफिश, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड डोंट क्राई. सेकंड थिंग इज, लोग बहुत बार बोलते हैं गीले बाल लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए बिकॉज आपको सर्दी हो जाएगी गीले बाल लेकर जाओगे. तो दैट्स नॉट ट्रू, गीले बालों से सर्दी नहीं होती बाहर. सर्दी जो है वो वायरसेस से कॉज होती है, सो इट हैज़ नो कोरिलेशन विद टेम्परेचर. सो दैट इज़ अ लाई. दिस इज़ द बिगेस्ट क्या बोलते हैं शैटर ऑफ माई बिलीफ, बिकॉज आई एक्चुअली यूज टू थिंक दैट बुल्स रिस्पॉन्ड टू द कलर रेड, बट दैट इज़ नॉट द केस. दे डू नॉट चार्ज बिकॉज दे सी रेड, दे एक्चुअली ओनली रिस्पॉन्ड टू मूवमेंट ऑफ द केप. जो केप होता है, जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है बुल को, उनके केप का मूवमेंट देख के द बुल जस्ट फॉलोज दैट और यू नो एम्स टुवर्ड्स दैट. इट्स नॉट द कलर. दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज इफ इट्स नॉट द कलर रेड देन व्हाई डोंट दे यूज एनी अदर कलर इंस्टेड ऑफ रेड. व्हाई जस्ट द कलर रेड? आई स्टिल हैव अ क्वेश्चन एंड आई स्टिल डाउट दिस. नेक्स्ट इज दिस, ये तो बहुत बार बोला गया है बचपन में टू अवॉइड गिविंग च्युइंगम टू किड्स, कि स्वॉलोइंग गम डज नॉट स्टे इन योर स्टमक फॉर 7 ईयर्स. हमें तो बोला जाता था कि 7 साल तक वो गम आपके पेट के अंदर ही रहेगा, इनफैक्ट पेड़ वेड़ बन जाएगा. बट दैट्स नॉट ट्रू, इट डज नॉट स्टे इन योर स्टमक फॉर 7 ईयर्स. In fact, it passes through your body within just a few days. Moving to the next one, chameleons. इसके बारे में हमने सबने पढ़ा है. The reason हम इतने सारे अपनी life में लोगों को कहते हैं तू तो गिरगिट है, रंग बदलता है. गिरगिट does not change color to camouflage. It does not change color to, you know, mix or merge with the background. It only changes color to communicate or regulate body temperature. तो आपने ऐसे ही नाम खराब किया हुआ है chameleon का. It does not do that to camouflage. उसके अलावा this is also very important. मेरे घर पर अभी तक ये होता है that a lot of these stray birds, they you know try and do nesting in your you know balcony pots and all of that. मेरा बहुत pots ख़राब हुए हैं, but basically मुझे ऐसे लगता था कि you know I should care for the you know eggs that they have laid or something. और जब भी मैंने कोशिश की है, I then saw that the bird never came back. So I thought that maybe if you touch the birds or the eggs or something, the birds apparently abandon their, you know, children or their eggs or whatever. But that's not true. That's not the case. They will very well remember and they will always come back. But aise kyun hua hai fir abandon hue hain? Because I have a doubt about this as well. Last but not the least, ye jo log kehte hain ki swimming karne se pehle aapko at least 1 ghanta wait karna chahiye if you've eaten something and not immediately swim, that is not the case. It does not help in any way. And finally, ye meri bahut gandi aadat hai, knuckles crack karna. I have a very very bad habit. Every now and then I'm only cracking knuckles. Call it anxiety, call it anything, but I have a habit of cracking knuckles. लोग बोलते थे कि ये करने से आपको arthritis बड़ी जल्दी हो जाएगा, but that's also not true. It is a lie. There is no link. Studies have found that there's absolutely no link between the two, so you can happily crack your knuckles without feeling bad about it. Which one of these was the most shocking to you, जो आपको लगता था अभी भी आप believe करते थे इन चीज़ों में, and it turned out to be a lie? Let me know it 101.062 पे. In the meantime, Vishal Dadlani and Shilpa Rao keeping you company. If there's any such other lie जो आप अभी तक बिलीव करते हो वो भी बता दो यार मुझे.

0: beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, अगर आप E311 पर है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड तो वहां पे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिल जाएगा मर्डर सिटी सेंटर के पास। उसके अलावा E44 रासल खोर रोड पर अगर आप है तो वहां पे आपको D3 के पास मिल सकता है थोड़ा सा ट्रैफिक। बिजनेस बे की तरफ जाते हुए स्मॉल कार एक्सीडेंट, 10 मिनट्स का डिले। अनदर कार एक्सीडेंट ऑन E44 अलखेल रोड, अगर आप अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया 4 के पास है, दुबई हिल्स स्टेट क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे व्हीकल ब्रेकडाउन भी है, एक्सीडेंट भी है, तो एटलीस्ट अबाउट 15-18 मिनट डिले ऑन दैट रोड इज वेल। एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो ऑन 4305. It's 10:37 on the big clock. You're with me, Zohra, on the big mix.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
3: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
4: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
0: ये है Zohra on the big mix on Big 106.2. The beat of Bollywood.

Bazi, right here on Big 106.2. This is the beat of Bollywood. 10:43 ho chuke hain, heading into our number 2 of the show. दूसरे घंटे में यार देखो, मेरा और जेंजी के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही लव हेट वाला है. बिकॉज समटाइम्स आई फील लाइक वाओ, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. समटाइम्स आई फील लाइक स्टॉप इट, समबडी स्टॉप दीज किड्स फ्रॉम डूइंग ऑल दीज रिडिकुलस थिंग्स दैट दे डू. एंड आई थिंक नाउ आई एम गोइंग टू से द सेकंड थिंग, बिकॉज आई जस्ट सीन अ पोस्ट जहाँ पे इट टॉक्स अबाउट ऑल द न्यू वोकैबुलरी, बेसिकली ऑल द न्यू टर्म्स when it comes to traveling in Gen Z language. So Gen Z have now decided ki hum banayenge alag terms apne that are travel related. So jab bhi hum travel kar rahe honge, there is a list of things, you know, phrases or words that they use which are only travel related, and that is a separate dictionary altogether. Matlab bahut sare words hai usme. So agar aap agli baar travel kar rahe ho aur koi Gen Z bachcha aapke upar ye word use kar deta hai, it'll just come in handy for you to be able to decode what on earth is this kid trying to tell me. I'm going to take you through that because why should I suffer alone? Aap bhi sun lo thoda.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood. Thank you.

0: आतिफ असलम की आवाज. आई फील लाइक वी नीडेड टू लिसन टू आतिफ असलम बिफोर वी गेट इनटू दिस दैट यू नो फ्राइज आवर ब्रेन कंप्लीटली.
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Gen Z ने बनाई है नई लैंग्वेज, नए वर्ड्स व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग. अ न्यू वोकैबुलरी, अ ट्रैवल वोकैबुलरी इज हियर टू कीप अप विद ऑल द टर्म्स दैट Gen Z हैव मेड अप नाउ. एंड आई थिंक नेक्स्ट टाइम यू ट्रैवल एंड स्पेशली इफ यू हैव सम Gen Z kids with you, you have to be aware of these terms because otherwise you're just going to be one lost puppy. Let's get into it without wasting any more time. Microcation is the first word that you need to know. Jaise vacation, staycation, वैसे आया है microcation. It's a short getaway lasting anywhere from 24 to 72 hours. It is designed to fit into everyday life rather than wait for an annual leave. तो आप ऐसे इसको plan करके नहीं लेते, एक छोटे से microcation लेते हो without any ज़्यादा prep. That is basically I don't need a vacation, I need a microcation in context. टेक्स्ट ये आपको समझ आ जाएगा अब, है ना. माइक्रोकेशन, रूम रॉटिंग, ट्रैवलिंग विद नो रियल एजेंडा बियॉन्ड स्लोइंग डाउन, द अकोमोडेशन बिकम्स द डेस्टिनेशन. ओनली प्लान वॉज टू रूम रॉट एंड ऑर्डर रूम सर्विस. दिस इज बेसिकली आपका ना कोई मन है कुछ करने का, ना बाहर घूमने का, ना एक्सप्लोर करने का, कुछ नहीं. यू जस्ट वॉन्ट स्विच ऑफ, यू जस्ट वॉन्ट गेट अवे फॉर अ वाइल एंड यू जस्ट वॉन्ट टू सिट एंड डू नथिंग. दिलजीत दोसांझ, अ वाइज मैन नेम्ड दिलजीत दोसांझ वंस सेड कि मुझे कुछ नहीं करना है. ये अगर आपका है एजेंडा तो फिर आप रूम रॉट कर रहे हो, दैट इज रूम रॉटिंग. कैन एन इवेंट, अ स्पॉन्टेनियस मोमेंट दैट बिकम्स मोर मेमोरेबल दैन एनी थिंग यू एक्चुअली प्लैंड. वी बैडली रिमेंबर द म्यूजियम बट वी स्टिल टॉक अबाउट दैट 2 AM रोड साइड चाय स्टॉप, दैट इज अ कैन एन इवेंट. बेसिकली पूरे ट्रिप में कोई एक ऐसी कोई चीज अगर हो जाती है That just sticks out, it just stands out. उसको बोलते हैं canon event. जैसे जो example मैंने आपको सुनाया कि वो पूरा लंबा trip museum गए, ये गए, वो गए, वो सब कुछ नहीं याद, बस उतना याद है कि सुबह के 2 बजे हम लोग चाय की टपरी पर रुके थे, वहाँ पर चाय पी थी. So that is a canon event. Moving on to the next, de-influenced travel. Basically choosing destinations that feel personal rather than places made famous by social media. This is something that I saw on Instagram lately. Some content creator खुद, it's an irony herself, she's a travel content creator, she posted saying, मैं ये trip मैंने प्लान की, यहाँ पर आना चाहती थी क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे इसके फोटोज वीडियोज देखे थे. यहाँ पर आके इट डजंट लुक एनीथिंग लाइक द फोटोज वीडियोज. आई फील लाइक इंस्टाग्राम हैज रूइंड इट फॉर अस इन दिस एंड दैट. काफी ज्यादा बैकलैश मिला कि आंटी यू आर ट्रैवल क्रिएटर योर सेल्फ, डोंट यू डू दैट योर सेल्फ. शी सेड येस आई डू बट दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ माई जॉब बिकॉज आई फील लाइक यू नो जो हिडन ये प्लेसेस हुआ करते थे, दे आर नॉट हिडन एनी मोर एंड इंस्टाग्राम हैज जस्ट सेट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दैट मेक्स अस डिसअपॉइंटेड वेरी इजिली. सो दैट इज अ डी इन्फ्लुएंस्ड ट्रैवल विच इज बेसिकली यू चूज डेस्टिनेशंस क्योंकि वो आपको पर्सनली फील करते हैं, नॉट बिकॉज आपने इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया. दिस इज सो फार द वोकैबुलरी. इसमें एक आधे और टर्म्स है विच आई फील लाइक आई शुड कवर. मेरा trip, a trip planned around your personality that interests your identity rather than a traditional checklist. Basically, a place that was not on your checklist randomly ki maine ye jagah dekhi mujhe jana hai, just because it feels a lot more personal to you kyunki wo aapki personality se match karta hai. If you're an adventurous person to aap aisi jagah pe jaate ho. If you're someone who just likes you know seeing architecture to aap us jagah pe jaate ho. So basically that is a mirror trip. Last but not the least is a vacation. A trip inspired by feeling or a feeling of mood rather than a specific destination. Basically a place जहाँ पे आपका मन कर रहा था जाने का, not just because आपने देखा but just because it felt like it. A place you were looking for peace. That is a vacation. Out of all these terms, which term do you think is the most interesting and that you would be using the next time you travel? Let me know. 800-1062. In the meantime, we have some brilliant songs lined up your way.
2: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ.
3: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं.
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना.
5: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना.
4: अलरास बोले तो
5: मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं.
4: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी. विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर.
1: Listen to her every day.
6: Mugambo! खुश हुआ.
7: जुबैर, अगर आपका बर्थडे है, आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा अब बर्थडे पार्टी में, आपने किसी रेस्टोरेंट में पार्टी दी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आप बिल भरोगे कि आपके सारे फ्रेंड्स कॉन्ट्रीब्यूट करें?
8: नहीं यार, ऑब्वियसली मेरे को ही बिल भरना पड़ेगा. नो, ऐसा तो कॉन्सेप्ट अपने इधर तो नहीं चलता है.
7: Yeah, it's a very non-desi concept, but it's become very common.
8: Okay.
7: तो आप ऐसी पार्टी में जाओगे नहीं जाओगे?
8: ना ऐसे पार्टी में तो कहाँ, थोड़ी जाना पड़ेगा, हमको ही बिल पे करना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा।
7: आई थिंक देसी इसके लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल इनविटेशन है, क्योंकि फॉर अस इट मींस होस्टिंग पीपल। तो इफ आई एम गोइंग टू योर हाउस, इफ आई एम गोइंग टू अ पार्टी जो आप ऑर्गेनाइज करें, देन आई अज्यूम के यू विल टेक केयर ऑफ इट, एंड मैंने सिर्फ एज अ गेस्ट जाना है।
8: ये बोलते अच्छी हॉस्पिटैलिटी में कंसीडर नहीं करा जाएगा।
7: तो मैं जाऊँ इस बर्थडे पार्टी में कि नहीं जाऊँ?
8: नहीं मत जाओ यार, क्यों जाओगे?
7: हाँ अभी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ, जिस हिसाब से मेरा माहौल चल रहा है बैंक अकाउंट से, मैं अपनी बर्थडे पार्टी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी।
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
9: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
10: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
0: 37 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी फिलहाल बढ़ते हुए 57% पर है, आज लोज जाएंगे 32 तक, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट एंड वेरी ह्यूमिड द रेस्ट ऑफ द डे।
1: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2, बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: शिगी विगी सोनू निगम की आवाज, ऑल्सो इफ यू डिडंट नो काइली मिनोग की आवाज इस गाने में ऑन द बिग मिक्स. इट्स 11:37 ऑन द बिग क्लॉक. दिस इज ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae, मेकिंग श्योर दैट यू बाय द राइट कार इंश्योरेंस एट द राइट प्राइस. इट कंपेयर्स द टॉप इंश्योरर्स फॉर यू सो दैट यू कैन ऑल्सो सेव अप टू 30% बाय कंपेयरिंग. यार ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल देम 800 Alfred, पे 24/7, देर अवेलेबल फॉर योर सर्विस. दैट इज insurancemarket.ae.
1: The Beat of Bollywood. The Beat Mix. Brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED 24/7.
2: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
3: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
1: ये है Zohra on the Beat Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

जैस्मिन सैंडलिस, ज्योति नूरान, रेबल, क्या क्या पावरफुल वॉइसेस ऑन द सॉन्ग यार वारी जवा धुरंधर 2 से ऑन द वेग मिक्स 11:46 हो चुके हैं. वो हेडिंग इनटू आर नंबर 3 एंड इफ यू आर एन इमरान हाशमी फैन देन एक एक झलक इनफ है यार ऑफ हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स फॉर यू टू गेट ऑल एक्साइटेड. कुछ क्लिप्स मैंने देखी, लॉट ऑफ पीपल आर लाइक अरे आवारा अपन 2 का क्लिप लीक हो गया. दैट्स नॉट आवारा अपन 2, दैट्स अनदर मूवी दैट इज वर्किंग ऑन. ये कौन से मूवीज है जिसमें इमरान हाशमी आने वाले हैं एंड वी आर गोना बी ब्लेस्ड विद हिज प्रेजेंस ऑन द बिग स्क्रीन. लेट्स टॉक अबाउट that in the next hour. You're with me Zora all the way until 2. A very, very good afternoon.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: going to the beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz? Ye suno.
2: मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा एंड आपको सबसे पहले तो एक काम करना है कि मुझे बताना है कि इस गाने की शूटिंग कहां पर हुई है. सो आर यू गाइस रेडी? ओके, इन 3, 2, 1 बताओ इस गाने की शूटिंग कौन से कंट्री में हुई है अपार्ट फ्रॉम इंडिया.
3: देखा तो ये जाना सनम.
2: साथ
4: Switzerland
2: is the correct answer. 1-0 in favor of Saad. Buck up, Vinita. इस गाने में शाहरुख खान की जैकेट का कलर क्या है?
4: Big Saad. Black.
2: Vinita, do you think that's a
5: Big
2: correct
5: Vinita.
2: Answer?
5: No.
2: What is the correct answer?
5: Brown.
2: Black और brown के बीच में क्या है सही जवाब? The answer is Saad. Congratulations, you are the winner. Jacket.
4: Thank you.
2: Black jacket that Shahrukh Khan was wearing.
0: Energy and action. Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2.

0: बच्चों की होगी यार सैयारा, लेकिन हमारे आवारापन के सामने तुम्हारी सैयारा क्या ही चीज है।
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: पता ही नहीं है तुम्हें असली प्यार क्या होता है अगर तुमने हमारी मिलेनियल वाली लव स्टोरीज या रोमांस मूवीज नहीं देखी है तो तुम नहीं बोल सकते कि सैयारा इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज नो इट इज नॉट। इट हैज एटलीस्ट 10 मूवीज बिफोर इट कैन इवन बी कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट लव स्टोरी। बट नॉनदलेस यार, मैं आवारापन की इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज वी ऑल नो आवारापन 2 आ रही है ऑन द 14th ऑफ ऑगस्ट एंड लिटरली एवरी सिंगल मिलेनियल इज वेटिंग टू वॉच इमरान हाशमी ऑन द बिग स्क्रीन अगेन एंड स्पेशली नोइंग कि आवारापन द ओरिजिनल मूवी उसका क्या इम्पैक्ट रहा था हमारी लाइफ में एंड हाउ वट अ कल्ट मूवी इट वॉज। वी नो दैट यू नो दिस मूवी हैज़ लाइक सम बिग शूज टू फिल इन, वी हैव सम वेरी वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, स्पेशली म्यूजिक को लेकर तो 100% है। फॉर मी इट वॉज जस्ट क्लियर जब मुझे पता चला कि इसमें वो दो गाने जो फेमस हुए थे तो फिर आओ एंड तेरा मेरा रिश्ता पुराना, ये दो गाने रिवाइव होने वाले हैं। आई जस्ट इन माई हेड वॉज लाइक इफ यू डोंट हैव द ओरिजिनल सिंगर्स कमिंग बैक फॉर दोज सॉन्ग्स देन You don't bring those songs back, and I think they've not disappointed. एक छोटा सा मैं बस एक एक एक लाइन आपको सुनाने चाहती हूँ यार।
2: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं
3: तो फिर

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
5: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
6: ये है ज़ोहरा on the Big Mix. On Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month.
1: फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ दी ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae आपके लिए गुड न्यूज, क्योंकि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कार रेंटल यही है यार इन द यूएई. यू नो दैट यू बीन लुकिंग फॉर ऑल अफोर्डेबल ऑप्शंस ओवर हियर एंड selfdrive.ae से बेटर आपको नहीं मिलेगा. एट जस्ट 899 dirhams अ मंथ, नो ओनरशिप, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड नो स्ट्रेस एट ऑल. सो पिक योर कार अप एंड गेट ड्राइविंग. दिस इज selfdrive.ae. गो सर्च देम selfdrive.ae पे और सिंपली डाउनलोड द ऐप. सेल्फ ड्राइव, योर कार, योर प्राइस, योर वे.

0: पहले तो एक काम करना है कि मुझे बताना है कि इस गाने की शूटिंग कहाँ पर हुई है। सो आर यू गाइस रेडी? ओके, इन 3, 2, 1 बताओ इस गाने की शूटिंग कौन से कंट्री में हुई है अपार्ट फ्रॉम इंडिया।
1: देखा तो ये जाना सनम।
0: साथ
2: Switzerland
0: is the correct answer. 1-0 in favor of Saad. Buck up, Vinita. इस गाने में शाहरुख खान की जैकेट का कलर क्या है?
2: Big Saad. Black.
0: Vinita, do you think that's a
3: Big
0: correct
3: Vinita.
0: Answer?
3: No.
0: What is the correct answer?
3: Brown.
0: Black और brown के बीच में क्या है सही जवाब? The answer is Saad. Congratulations, you are the winner and you are entered to the board. Jacket.
2: Thank you.
0: Black jacket that Shah Rukh Khan was wearing.
4: Energy and action. Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
5: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, इफ यू आर ऑन E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, लाइट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा मोरिस सिटी सेंटर से शुरू होता हुआ गोइंग टुवर्ड्स नादल हमार, उसके अलावा E44 अल खैर रोड पर अगर आप है जा रहे हैं टुवर्ड्स बिजनेस बे डिजाइन डिस्ट्रिक्ट के पास, आपको मिलेगा काफी ज्यादा हैवी ट्रैफिक बिकॉज ऑफ अ कार एक्सीडेंट ओवर देयर, एटलीस्ट अबाउट 15 मिनट डिले हैज बिन रिपोर्टेड। उसके अलावा अगर आप हेल्थ केयर सिटी के पास है ऊद मेहता स्पेसिफिकली D79 पे आपको मिल जाएगा थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक फॉर अबाउट 8 to 9 मिनट्स। उसके अलावा थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक आपको मिल जाएगा D72 स्ट्रीट पे, ऑल्सो आप अगर E44 लेकर जा रहे हैं दुबई हिल्स स्टेट टेकिंग द D63 वेस्ट जुमेरा एग्जिट तो वहां पे भी एक कार एक्सीडेंट की वजह से 10 मिनट का डिले। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट लेट अस नो ऑन 4305।
4: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

शंकर महादेवन विद तुझे आज मैंने जो देखा, लव लव लव दिस वन। और आज आप जो सुनने वाले हो उसके बाद मतलब आप सिर्फ मुझे थैंक यू बोलते रहोगे, बिकॉज इफ यू बीन वेटिंग दैट यू नीड अ गुड एस्केप फ्रॉम दिस हीट, यू नीड अ फैमिली स्टेकेशन एट अ ब्यूटिफुल प्लेस, देन दिस ड्रीम इज वेरी वेरी लाइकली टू कम ट्रू। बिग समर सरप्राइजेज हम आपको दे रहे हैं, द अल्टीमेट स्टे के अपॉर्चुनिटी। ऑल यू गॉट टू डू इज पार्टिसिपेट विद अस। कैसे करना होगा, अगले घंटे में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू आर लिसनिंग। दिस इज द बिग मिक्स विद मी ज़ोहरा एंड टिल डे।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गोल्ड चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गोल्ड चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग

0: The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: 36 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है आज एट 57% ऑलरेडी. आज हाईज जाएंगे 38 तक, लोज जाएंगे सिर्फ आज 33 तक. इट्स वेरी हॉट एंड वेरी ह्यूमिड टुडे.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2. बिग 106.2.

0: magical.
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurance Market.ie.
2: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: हां जी, जोहरा के साथ हो आप ऑन द बिग मिक्स. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. फिलहाल हम बिग मिक्स की नहीं, हम बात करेंगे बिग समर सरप्राइजेस की, बिकॉज दैट इज योर चांस ऑफ विनिंग द अल्टीमेट फैमिली स्टेकेशन. यार, दिस समर बिग 106.2 इज गिविंग यू द अल्टीमेट स्टेके ऑन बिग समर सरप्राइजेस, प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सो सलमायरिद इन रासल खेमा. सो गेट रेडी फॉर द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेकेशन एट दिस स्टनिंग प्रॉपर्टी. यार, रासल खेमा में है रिक्सो सलमायरिद, जहां पे आपको जाने का मौका मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ टू जस्ट गो अनवाइंड फॉर अ लिटिल बिट, स्विच ऑफ फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस, फ्रॉम ऑल द ईमेल्स, एंड जस्ट हैव अ गुड टाइम ओवर देयर. चिल बाय द पूल, यू कैन हैव सम अमेजिंग फूड. उसके अलावा जस्ट यू नो, मेक श्योर यू आर टेकिंग लॉट्स ऑफ पिक्चर्स, वीडियोस, एंड मेकिंग ब्यूटीफुल मेमोरीज. ऑल्सो यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग डेली प्राइजेस वर्थ 500 dirhams, इंक्लूडिंग मूवी टिकट्स एंड F&B vouchers as well. So there's so many things for you to win every single day. Participate करो, just tune into the big breakfast or the big thrill and type करना है BSS space apna naam and send it to a WhatsApp, which is 309-1062. That's 309-1062. That is our WhatsApp, 054-309-1062. BSS space apna naam, ye aapko bas bhejna hai to register. This is the big summer surprises. Presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almayrath, Russell Khema, only on Big 106.2.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Henna Speedy Easy Hair Color. Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ।
3: सुप्रिया बताइए आप मुझे कि क्या करती हैं आप?
4: मैं स्कूल में काम करती हूँ।
3: आर यू अ टीचर?
4: नो, आई एम द एचआर।
3: ओह, यू द एचआर। यार टीचर्स जो हैं वो तो छुट्टी लेने पे बोलती हैं पेरेंट्स से साइन करवाओ, जब उन्हें खुद छुट्टी चाहिए होती तो आप किससे साइन करवाती हैं?
4: प्रिंसिपल से।
3: अच्छा, इन्हें भी परमिशन लेनी पड़ती है?
4: हाँ तो।
3: अच्छा, ये देखो, हाँ तो। टीचर्स क्या बहाने देती हैं छुट्टी लेने के लिए?
4: ओ माय गॉड, कितने, उनको तो कोई भी बहाने, लाइक एनीथिंग अंडर द सन इज अ बहाना फॉर देम।
3: वाओ, देखो स्टूडेंट्स, इफ यू आर लिसनिंग टू अस, आपकी टीचर्स आर आल्सो एग्जैक्टली लाइक यू, उनके भी बहाने काफी हैं।
4: आई होप मेरे टीचर्स नहीं सुन रहे हो मुझे।
3: आप एचआर हो, यू डोंट हैव टू वरी।
4: होता है।
3: हाँ, मतलब बस कर देना हायर फायर। चलो यार।
4: ओ माय गॉड।
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
5: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, इफ यू आर ऑन E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड, लाइट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा मोरिफ सिटी सेंटर से शुरू होता हुआ गोइंग टुवर्ड्स नादल हमार, उसके अलावा E44 अलखेल रोड पर अगर आप है जा रहे हैं टुवर्ड्स बिजनेस बे डिजाइन डिस्ट्रिक्ट के पास, आपको मिलेगा काफी ज्यादा हैवी ट्रैफिक बिकॉज ऑफ अ कार एक्सीडेंट ओवर देयर, एटलीस्ट अबाउट 15 मिनट डिले हैज बिन रिपोर्टेड। उसके अलावा अगर आप हेल्थ केयर सिटी के पास है ऊद मेहता स्पेसिफिकली D79 पे आपको मिल जाएगा थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक फॉर अबाउट 8 to 9 मिनट्स। उसके अलावा थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक आपको मिल जाएगा D72 साल स्ट्रीट पे। ऑल्सो आप अगर E44 लेकर जा रहे हैं दुबई हिल्स स्टेट टेकिंग द D63 वेस्ट जुमेरा एग्जिट, तो वहां पे भी एक कार एक्सीडेंट की वजह से 10 मिनट का डिले। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट लेट अस नो ऑन 4305।
1: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
7: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हां जी, विद दैट इज माय टाइम टू टेक योर लीव. 2 बजने को आए हैं. दैट इज माय क्यू टू एग्जिट द स्टूडियोज. मेरी आवाज, मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, मेक श्योर गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ज़ोहरा अमीन इज माय हैंडल ओवर देयर. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस 106.2 बिग एफएम पे ऑन आवर सोशल्स फॉर ऑल डेली फन कंटेंट. आई विल नाउ सी यू टुमारो मॉर्निंग 10 से 2 के बीच ऑन द बिग मिक्स. एंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग 106.2

0: कामरान अहमद ऑन द वोकल्स ऑफ दिस वन द ट्रैक इज लंबी जुदाई उज्जवल खन्ना के साथ बिग 106.2 पे आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
0: वेल जुदाई चिप्स से होना बहुत मुश्किल काम है. एक बारी अगर आपका हाथ जो है स्लिप हो गया पैकेट के अंदर उसके बाद तो बहुत मुश्किल काम है. एंड यू नो वन ऑफ आवर कलीग ही इज जस्ट रिटर्न फ्रॉम केरला एंड यू नो एवरी टाइम ही गोज ही ब्रिंग्स एंड वी टेल हिम टू ब्रिंग बट उसके बाद जो रेजिस्टेंस गेम होती है ना वो बड़ी सॉलिड होती है. नाउ बनाना चिप्स की तो बात ऑलरेडी होती है. नाउ देयर इज अनदर वेरी डिलीशियस चिप्स दैट कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ केरला. यू गॉट टू टेल मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये कौन सी सब्जी स्लैश फल का बनता है. ओके आई वियर अ प्रिकली ग्रीन आर्मर ऑन द आउटसाइड बट इनसाइड आई एम स्वीट एंड गोल्ड. I wear a prickly green armor on the outside, but inside I'm sweet and gold. I'm one of the largest fruits a tree can ever hold. What am I? Iski sabzi bhi banti hai badi dahasu. I wear a prickly green armor on the outside, but inside I'm sweet and gold. I'm one of the largest fruits a tree can ever hold. What am I? 800-1062 is my toll-free number, which is 800-1062. A lot of people would not have it as a sabzi kam phal if you sort of do it in you know the proper sabzi way. But chips mein toh koi bhi kha leta hai. Pata nahi chalta swaad iska. 800-1062 is my toll-free number. Dial in right now as I give you Javed Ali in the track is Ek Din Teri Raahon Mein Aapke Saath. Until 5, this is The Big Life.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Just like a perfect Dharma production ka storyboard, this is what this song is. Ujjwal Khanna ke saath Big 106.2 pe, this is the big life. Sab kuch perfect hona chahiye. Gana, sequence, choreography, and most importantly, looks. That's where Karan Johar's hits the most.
1: The big life with Ujjwal on Big 106.2.
0: Well, this also hits right at it. लेकिन आप इसके लुक पे मत जाइए, क्योंकि जब आप इसको चिप्स के फॉर्म में खाओगे तो बहुत टेस्टी लगता है. What am I talking about? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक जुमला पूछा था, एक रिडल पूछा था. I wear a prickly green armor on the outside, but inside I'm sweet and gold. I'm one of the largest fruits a tree can never hold. What am I? And the correct answer, of course, is jackfruit. जैकफ्रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? जैकफ्रूट, लेट मी फटाफट गूगल इट. जैकफ्रूट इन हिंदी इज कॉल्ड कटहल. ओह सॉरी, मैं भूल गया था, कटहल. यस, कटहल की सब्जी बहुत अच्छी लगती है काफ़ी लोगों को, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती. लेकिन हाँ, विद द चिप्स इट इज़ सो नाइस. मृणाली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर. विशिंग यू कि आप आज कटहल की सब्जी खाएं. एक तो मंडे ऊपर से कटहल की सब्जी खिला रहा है उज्जवल. तो ठीक है, चिप्स खा लो यार, जो आपका मन है वो खाओ. लेकिन हाँ, ये इसके फ़ायदे बहुत बढ़िया होते हैं. जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, उसके फ़ायदे बहुत होते हैं. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैकफ्रूट के. फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, इस गाने से भी आप करेंगे बेनिफिट. द ट्रैक इज़ यारा सिली सिली, इसका अनप्लग वर्जन शिल्पा राव की आवाज़ में. आपके साथ अंटिल फाइव, दिस इज द बिग लाइफ ऑन द अदर साइड ऑफ दिस आवर. लेट्स टॉक अबाउट विशाल ददलानी, इट वॉज हिज बर्थडे यस्टरडे.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
2: सुनो जियो खुश रहो मुस्कुराओ क्या पता
1: कल हो ना हो।
3: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: विशाल ददलानी स्पेशल बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ ग्रंज द पावर दैट ही हैज इन हिज वॉइस एंड जो उनके हाई ऑक्टेव नोट्स लगते हैं वो कमाल है. मतलब फॉर अस फॉर मैंगो ऑडियंस गाना बहुत बढ़िया होता है स्पेशली जब आप बिल्कुल ऊपर तक लेके जाते हो गाने को.
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
0: both originally and figuratively. Well, that's what Vishal Dadlani has done. इसमें मैं music composer Vishal Dadlani की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं singer Vishal Dadlani की बात कर रहा हूँ. Of how great he has been and all his songs are just so good to hear. Especially his सारे 2000s के गाने. And he doesn't just stop here. Who are his favorite singers? When he was asked in one of the interviews, this is what he said.
2: Hi Vishal.
3: Hey man.
2: One favorite song of each artist, but you need to sing the line. Arijit Singh.
3: Hey yaar. नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई
2: और नो वे
3: जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई हेलो लौट के सदा.
2: हाय हाय क्या गाना है
4: सुखविंदर बाजी. दैट इज ट्रू
3: सुखी. यार आई कैन कीप सिंगिंग माय सॉन्ग्स ओनली फिर दिल हारा रे दिल हारा हारा दिल हारा हारा मैं हारा. With Sukhi sir, my favorite song could be Aar janda vich dalam dalliyan main peer manavan challiyan main peer manavan challiyan. This is from Saleem and Suleiman's Coke Studio. Kick ass song, please hear it.
2: Saleem Suleiman
3: adab

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: There's so much pep in her voice. I'm talking about Vishal Dadlani today. It's his birthday. Actually, rather, it was his birthday yesterday and celebrating his birthday today. Big 106.2 pe. So, have a music arrangement, ho, music composition, ho, ya phir, you know, apne playback dena ho. Most importantly, as a judge also. I think also what I've seen of Vishal is he's very, very, very, very emotional as a human being. And we've seen this often on television, you know, jab ye aate hain as a judge, halaki wahan par hame lagta hai ki yahan thoda bahut aapko extra करना पड़ता है वो सही बात है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ता है लेकिन उसके बावजूद भी इमोशंस इज समथिंग दैट यू कांट सॉर्ट ऑफ राइल अप इन अ ह्यूमन बीइंग वो आ जाते हैं नेचुरली एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू जस्ट टेक इट टू टाइम्स और टू अ कपल ऑफ नॉच और व्हाटएवर यू फीलिंग राइट नाउ दैट्स व्हाट विशाल दादलानी इज ऑल अबाउट हिम सम ग्रेट ट्रैक्स अप कम्स इन लकी अली की आवाज के साथ इनकी भी आवाज है विशाल दादलानी की द ट्रैक इज अनजाना अनजानी आपके साथ अंटिल 5 o'clock दिस इज The Big Life.
1: Beat 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: 105.2, the beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना चाहो।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए GoChat कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Today's weather update. Sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's Sub-Zero Fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
4: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
5: Hey,
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: हेलो हाय, गुड इवनिंग टू यू। बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं आप। ट्रैफिक अपडेट वेरी क्विकली, अगर आप इस वक्त हैं अलकोज इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, वहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलने वाला है एज ऑलवेज। इंडस्ट्रियल एरिया सेकंड, ऑल्सो स्लो मूविंग राइट नाउ। मूविंग ऑन टू E44 रासल खोर रोड पे आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा इन टू दुबई, अबाउट 5 मिनट्स का डिले है वहाँ पे भी। शेख जायद रोड पे अगर आप हैं डाउन टाउन दुबई के आसपास, आपको मिलेगा ट्रैफिक। बिजनेस बे के आसपास थोड़ा सा ट्रैफिक मिलने वाला है। अल एतिहाद स्ट्रीट, देयर इज अ लॉट ऑफ कमोशन देयर। स्लो मूविंग ट्रैफिक है अल नादा के आसपास भी। शारजाह इंडस्ट्रियल एरिया 2 ऑल्सो लुक्स लिटिल पैक्ड राइट नाउ, कंजेस्टेड राइट नाउ। शारजाह इंडस्ट्रियल एरिया 13 एज वेल इफ यू आर शारजाह बाउंड। E88 अल दाहिद रोड पे आपको थोड़ा सा स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा। एनी द ऑब्स्ट्रक्शन यू कैन टेक्स्ट 5, which is 4305. Nura Sisters, the track is Pataka. Good day.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: रोचक कोहली की आवाज, द ट्रैक इज आप जैसा कोई फिल्म से जब तू सुजन, टाइम टू रैप इट अप फ्रॉम माय साइड, दिस इज द बिग लाइफ,
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 The beat of Bollywood.
0: Life's buzzing right now in Dubai. A lot of people are returning. A lot of people are actually leaving as well. क्योंकि छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, summer vacation शुरू हो गए हैं, which also means 2 months of, you know, ये जो travel time है आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, because you'll see lesser cars, lesser school bus. But again, September के बाद is the time when everyone returns, and then of course Dubai buzzes at that time, and hopefully a lot of people which are still contemplating with the fact that कि हाँ business थोड़ा इम्प्रूव, थोड़ा और होना चाहिए. आई थिंक सितंबर इज द टाइम फॉर एवरीवन टू सॉर्ट ऑफ गो फॉर इट, डू एवरीथिंग, डू योर प्रेप वर्क, एंड सितंबर इज द टाइम दैट यू हिट दैट माइलस्टोन ऑफ अगेन कमिंग बैक विद ऑल दैट पावर. लीविंग यू नाउ विद द ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज में, काफी राना, एंड देन कम्स इन मानसी फ्रॉम 5 to 9 विद दैट एक्साइटमेंट ऑफ द बिग थ्रिल, योर इवनिंग ड्राइव शो. Okay, and you can keep following us on our Instagram. We are by the name of 106.2 Big FM, which is 106.2 Big FM. God bless you and your family. Stay safe, drive safe. I'll see you tomorrow, sharp at 2 till 5.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना।
1: रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपने कानों तक सुनाई दे।
0: मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Score
4: 25 million dirhams with big ticket.
3: 5-1 million dirham prizes.
4: Plus weekly cash draws.
3: Don't miss your shot.
4: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
2: The Big Chill.
6: All my favorite music in one spot.
2: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big 106.2. That's My Song by E-End.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is The Big Thrill. Main hoon Mansi, all set to keep you company until 9. Ab na ek aisi cheez hai jo all the new drivers would understand. We're okay with the driving. Parking is what scares us. So over the weekend, in fact yesterday, my friend wanted to see this particular store. Hum wahan gaye and wahan ki parking situation itni zyada scary thi mere liye. Maine to aadha ghanta parking nahi mili. Main mani man mein khush ho rahi thi ki yaar beizti nahi hui, bol dungi parking nahi mil rahi hai. Suddenly jab hum nikalne wale the, ek gaadi wahan se nikalne lagi. एंड मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे पीछे कम से कम 5 गाड़ियां खड़ी हो गई, बट मैं वहां पार्क नहीं कर पाई. सारे नथिंग स्केयर्स अ न्यू ड्राइवर मोर देन पार्किंग. हाँ, अभी गाड़ी में बैठ बैठ के इफ यू आर स्माइलिंग, कभी आप भी वहीं थे जहां पार्किंग देखकर आप गाड़ी आगे बढ़ा लिया करते थे. वेल, वी हैव गॉट अ बिग समर सरप्राइज वेटिंग फॉर यू. आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स किक स्टार्टिंग द शो विद

0: चॉइस। मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixo's Al Mayrid Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
2: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
3: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
4: When your skin feels good, confidence follows you everywhere. At Zuleika Hospital and Medical Center, our dermatology experts treat everything from acne, pigmentation and hair loss to skin allergies and aging concerns. Get healthier and clearer skin that looks and feels natural with our exclusive and affordable dermatology packages. Zuleika cares for your skin, for you. Call 600-52442 to book your appointment.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: It is 35 degrees, feels like 45. Low जाएगा अराउंड 32. Excessive heat, humidity फिलहाल 57% पर।
1: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: The Beat of Bollywood. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूस गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: Alright, slow moving traffic is like the Garab Sheikh Mohammed bin Zayed pe hai Marif to Muhisna. Filhal a 20 minute delay. There's also traffic if on the Hesse Street going towards JVT, JVC, all the way towards Sport City. Patchy traffic on Sheikh Zayed as well. Not really bad. Filhal 20 minute dikha raha hai. Aage aage dekho hota hai kya. Agar aap kahin atke hain, bataiye 800-1062 par.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
5: गुस्से से बोलेगी, नहीं जाऊंगा। प्यार से बोलेगी, मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे, जहां न वक्त न तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Pressure.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is the Big Thrill. Mansi, we're playing the 5-second rule. We've got Rakhi, and she's Rakhi Kapoor. By the way, I told her Rakhi Sawant is my spirit animal. I love her. Matlab, Rakhi Sawant jitna unfiltered such is duniya mein koi nahi bolta hai, right, Rakhi?
3: It is 100% true. She's very witty. She has on her mind. She'll just say it out loud.
2: Are you also like that? Do you have no filters and you speak your mind?
3: Yes, she's my spirit animal.
2: Meri bhi. I love her. Filhal, Rakhi, do you drive?
3: Yes, I am driving as a matter of fact.
2: Very nice. I have a very important question. I'm a new driver, okay? Kal hum ek jagah gaye jahan pe parking bahut tricky thi. Ab mujhe basic angle parking aur garage parking aa gayi hai parallel. Abhi tak maine attempt nahi kari hai. But us jagah ki parking bahut tricky thi. To pehle to parking mil nahi rahi thi. I was very happy ke besti nahi hogi meri friend ke samne. Phir mil gayi ek banda jo hai chala gaya jab hum nikal rahe the. Maine 20 minute koshish kari, meri gaadi wahan lagi nahi. To as a new driver aapne ye parking anxiety face kari hai? Matlab gaadi chalana is still okay, but parking especially new parking give me a lot of anxiety.
3: Yes, especially when somebody's behind you and they're honking a lot. So what I usually do is just find a very open space. You don't have to like find between park spaces. Try to go for the maximum space you can get, because as a new driver you can face a lot of challenges with the angles.
2: कल तो बिल्कुल ओपन स्पेस नहीं थी, वो पैक्ड जगह थी और पीछे तीन गाड़ियां खड़ी थी और वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया हो. इट वाज सो बैड, आई कांट टेल यू. माय फ्रेंड हैड टू स्टैंड आउटसाइड. आगे करो, पीछे करो. आई सेड बहुत बेइज्जती हो गई, यहाँ से निकलो अब. तो ये सब न्यू ड्राइवर्स के साथ होता है, राइट?
3: यस.
2: डू यू रिमेम्बर लीविंग एनी प्लेस बिकॉज द पार्किंग सिचुएशन वॉज ट्रिकी इनिशियली?
3: Oh, so many times. It was 4 years ago when I initially started driving.
2: Huh.
3: And I would get so panicked then with the honks and horns. They make you feel so uncomfortable.
2: I know.
3: I make sure that as a driver, I don't do that to somebody else. Take your time. Park at your own pace. I'm ready. I'm waiting. There's no issue. If I would just leave home early, not disturb you.
2: Har new driver ko Rakhi jaise drivers chahiye. जो उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें जज ना करे वहां खड़े खड़े. फिलहाल राखी विल प्ले दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5-second रूल. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. आपने तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर, ठीक है?
3: ओके, साउंड्स वेरी हार्ड तो बढ़िया. ओके,
1: 5-second रूल.
4: ओह या,
2: 3 things दैट आर येलो इन कलर एंड आप खा सकते हैं.
3: बनाना.
2: ओके,
3: लेमन.
2: और ओह, खलास टाइम. तीन ऐसी रोड्स इन द यूएई जहाँ पे न्यू ड्राइवर्स को बहुत घबराहट हो सकती है.
3: टंटन रोड, जलाई एंड
2: ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट.
3: बुर्ज खलीफा स्ट्रीट टू. या
2: मैं अभी वहां तक पहुंची नहीं हूँ. मुझे बहुत डराया हुआ है लोगों ने. ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट. तो मैं अभी वहां तक पहुंची नहीं हूँ. 3 बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में दिल आता है, द वर्ड दिल. दिल दिल दिल फटाफट. 3 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनका नाम M से शुरू होता है, विद द लेटर M. अरे अभी नेटफ्लिक्स शो आया था, माधुरी दीक्षित.
3: आई हैव नो आइडिया फॉर M, बट M इज सो हार्ड.
2: इट इज अ हार्ड गेम, आई एम टेलिंग यू. इट साउंड्स वेरी वेरी इजी. 3 things दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर वर्क प्लेस.
3: पार्किंग स्पॉट, टाइमिंग एंड कल्चर.
2: I would agree with the parking spot though.
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: So isn't parking free for you at work?
3: No.
2: Same here. Rakhi, hit or miss tha. Most of your answers were not within 5 seconds. But thank you so much for being such a good driver to new drivers. We need more people like you, especially on the Hesse Street. You have a great evening.
3: You too, bye.
2: 5-second rule, जैसा मैंने कहा, बहुत easy sound करता है. अगर आपको लगता है आप crack कर सकते हैं, 800-1062 is the number to dial.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening, you have Big Thrill and Mansi keeping you company until 9. Pehle kaam ki baat. Free family staycation. Agar aap jeetna chahte hain, you need to register for the big summer surprises right here, right now. 054-309-1062 pe WhatsApp karna hai. BSS apna naam. That's it. Also, I want honest answers here. As a new driver, kya aapne jagahein kahin jana tha? You missed going to those places, or you actually went to that place, saw the parking situation, and aapne socha ki nahi, bhalai isme hai ki yahan se nikal liya jaye, varna is पार्किंग के दल दल में अगर मैं फंस गया तो निकल नहीं पाऊंगा. अब कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, देयर वाज अ ट्रिकी पार्किंग सिचुएशन. आई डिड नॉट गिव अप, आई ट्राइड, बट बहुत बेइज्जती हुई. पीछे लोग हॉर्न बजाने लगे तो मैं बस निकल गई वहां से और मैं अंदर गई नहीं. तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, डेफिनेटली लेट मी नो ऑन 800-1062.

0: सैलरी डे ऑब्वियसली अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी हेक्टिक भी। कैश निकालो, बिल्स और एक्सपेंसेस के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए एक्सचेंज सेंटर के चक्कर लगाओ।
1: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? ई एंड मनी यूज करो।
0: क्या सैलरी के लिए?
1: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली ई एंड मनी में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
0: जैसे क्या?
1: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
0: वाह, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
1: बिल्कुल, ई एंड मनी के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो ई एंड मनी के साथ फिक्र छोड़ो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae. The Big Mix, weekdays 10 a.m. to 2 p.m. only on Big 106.2, brought to you by insurancemarket.ae.
3: Score!
4: 25 million dirhams with big tickets.
3: 5-1 million dirham prizes.
4: Plus weekly cash draws.
3: Don't miss your shot.
4: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
2: Missed your morning buzz?
6: Utha le re deva, utha le re baba.
2: Yes or no?
7: Main aapko ek gana sunaunga. एंड आपको सबसे पहले तो एक काम करना है कि मुझे बताना है कि इस गाने की शूटिंग कहां पर हुई है। सो आर यू गाइस रेडी? ओके, इन 3-2-1 बताओ इस गाने की शूटिंग कौन से कंट्री में हुई है अपार्ट फ्रॉम इंडिया?
8: देखा तो ये जाना सनम।
7: साथ
9: स्विट्जरलैंड।
7: स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर। 1-0 इन फेवर ऑफ साध। बकअप विनीता, इस गाने में शाहरुख खान की जैकेट का कलर क्या है? बिग साध।
9: ब्लैक।
7: विनीता, डू यू थिंक दैट्स द करेक्ट आंसर?
10: नो।
7: व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
10: ब्राउन।
7: ब्लैक और ब्राउन के बीच में क्या है सही जवाब? द आंसर इज साध। कांग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर। Jacket.
9: Thank you.
7: Black jacket that Shahrukh Khan was wearing.
2: Energy and action. Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
13: 35 degrees outside, low jayega around 32. Pretty humid though, humidity filhal 61% par.
2: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Moving traffic milega. Traffic is a bit patchy at the moment. JLT Marina ke paas bhi. There's also heavy traffic. If you're on the Sheikh Mohammed bin Zayed, Varka, Murdif, Mohesna, it's all packed. फिलहाल दिखा रहा है एक घंटे का डिले, उतना ही डिले शेख जायद पे भी, एक घंटा चार मिनट का डिले इनफैक्ट. इसके अलावा कहीं अटके हैं मुझे बताइए 800-1062 पर.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
2: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप ला रही है? क्यों ली? तेरे बाप का माल है?
3: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
1: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह Big Thrill of Mansi and a big question. हाँ, आज हो गए होंगे 5 साल 10 साल आपके लाइसेंस को, बट शुरू में जब आप गाड़ी चलाते थे, क्या आप किसी जगह पहुंचे एंड पार्किंग सिचुएशन देखकर आपने सोचा कि नहीं ये नहीं हो पाएगा और आप वापस चले गए. कल मेरे साथ ऐसा हुआ, एक मॉल जाना था मैंने, पार्किंग इतनी ट्रिकी थी, बहुत बेइज्जती हुई है मेरी. एंड राइट नाउ आई हैव गॉट शोहेब विद मी. हाय शोहेब.
2: Hi, hi, how are you?
1: I'm good. कितने साल हो गए गाड़ी चलाते हुए?
2: मुझे 9 साल हो गए. मैं मेरा लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है.
1: ये उन्हीं में से हैं जो पीछे से हॉर्न बजाते हैं, जज करते हैं कि अरे यार गाड़ी नहीं लग रही है तो लेके क्यों निकलते हो, घर पे बैठो, है ना. हैं, खुद ने भी शुरू किया था ना किसी दिन?
2: नहीं नहीं, अलहमद मतलब मैंने कभी ऐसा ड्राइव नहीं की कि मतलब किसी वाली को परेशानी हो, क्योंकि मैंने इंडिया दिल्ली से हूँ मैं और वहाँ से भी मैंने ड्राइव करी है, तो मेरा तकरीबन एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट.
1: देखो दिल्ली वाली गाड़ी अगर आप यहाँ चला रहे हो ना सर, तो आपके पेट्रोल से ज्यादा आपका फाइन लग रहा होगा 100%.
2: पार्किंग की बात आई है तो मैं पार्किंग की बताता हूँ कि मैं यूएई में जब मैं आया तो उसमें फर्स्ट टाइम में मेरा पहला जो फाइन पड़ा था मुझे 900 दिरहम का पड़ा था 2016 में पड़ा था, फर्स्ट फाइन था मेरा अबू धाबी में.
1: किस चीज के लिए? पार्किंग के लिए.
2: हाँ पार्किंग, एक्चुअली मैंने रात को मैं फ्रेंड के घर गया था तो मैंने पार्किंग डाली रेसिडेंशियल पार्किंग में. मुझे नहीं पता था कि मैं नया नया ड्राइवर था तो वो गाड़ी उठा के ले गए मेरी, तो दैट वाज द ह्यूज फाइन फॉर मी. एंड बिकॉज इन 2016 900 dirhams इज वेरी ह्यूज अमाउंट,
1: इट स्टिल इज इन 2026 आल्सो. 900 dirhams इज अ बिग अमाउंट, सो आई अंडरस्टैंड द झटका दैट यू गेट.
2: ये बात तो है, मतलब ये लोगों को, बहुत से लोग होते हैं कि रैश ड्राइविंग करते हैं, वो सोचते हैं कि हम परफेक्ट ड्राइवर्स हैं, बट परफेक्ट ड्राइवर्स नहीं है, दे आर जस्ट लाइक दूसरों की लाइफ को डेंजर में डालना है कि मतलब यार आप खुद अच्छे ड्राइवर हो या कोई भी हो, लेकिन आप दूसरों को इस तरीके से ड्राइव नहीं करो कि दूसरे वाला एक्सीडेंट कर सकता है.
1: That is absolutely true and of course as a new driver let it be. अगर आप 60 की रोड पे 60 पे चला रहे हो, it's your choice. So you don't have to get scared or panic. देखो 2 महीने हुए हैं, मेरे में कॉन्फिडेंस आता जा रहा है. फिलहाल आज शाम हम डिस्कस कर रहे हैं पार्किंग सिचुएशन. कभी ऐसा हुआ है किसी जगह आप गए हो बिकॉज द पार्किंग वॉज कॉम्प्लिकेटेड, आपने वो जगह जो है छोड़ दी, इनफैक्ट यू हैड अ प्लान बट यू कैंसिल्ड द प्लान एंड यू मूव्ड अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्ड कॉम्प्लिकेटेड पार्किंग. हेड टू आवर इंस्टाग्राम पेज, देयर इज ऑल्सो पोल अप देयर, गो एंड वोट 106.2 बिग एफएम इट इज.

0: Discover the Freedom plan that suits you best. Freedom. Your choice. Your rules. Visit eand.ae to learn more. T's and C's apply. E&. Go for more.
1: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
2: हे मामो
1: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
2: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
3: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चॉइस। मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Ready, throw! Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: InsuranceMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. InsuranceMarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by SelfDrive.ae.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: 34 डिग्रीज आउटसाइड, लो जाएगा अराउंड 32, वेरी ह्यूमिड। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 68% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 बिग। बिग 106.2

0: 25 million dirhams with big tickets.
1: 5 1 million dirham prizes.
0: Plus weekly cash draws.
1: Don't miss your shot.
0: Buy now at bigticket.ae.
2: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
3: Are ho samba. तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है?
4: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
3: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
3: चलो चले अलराज।
5: The Big Jill.
6: All my favorite music in one spot.
5: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
7: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
5: Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
8: Alright, traffic still slow moving. अगर आप शेख जायद पे हैं, एक घंटे का डिले है, बहुत ही स्लो मूविंग सिचुएशन है वहाँ पे. इसके अलावा दिस ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद स्पेशली मर्डर टू मोहिंसना गेट्स बेटर पोस्ट दैट. ट्रैफिक ट्रेलिंग वेरी वेरी स्लो नियर फेस्टिवल सिटी, दुबई क्रीक हार्बर, राशिदिया. बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक स्टिल आपको मिलेगा अगर आप प्रोडक्शन सिटी के आसपास हैं. एनीथिंग एल्स यू'd लाइक टू रिपोर्ट, लेट मी नो 800-1062 पर.
5: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big.

0: CarDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह है Big Thrill Mansi. वैसे thrilling, exciting, expenses paid staycation आपका इंतजार कर रही है. It's time for the big summer surprises. अगर आपने अभी तक register नहीं किया है, then send us a WhatsApp, BSS, your full name to 054-309-1062, just like Mayank and Pankaj. जैसे ही Mayank ने hello बोला, मुझे लगा सो के उठा दिया है मैंने. नींद से उठाया क्या आपको?
2: No, I'm tired, but I'm not sleeping. It's fine.
1: Wow. You definitely had a very good Monday. आपकी आवाज से ही लग रहा है I'm tired but I'm not sleeping. पंकज जी आप बताइए कैसे हैं?
3: जी जी जी एकदम good.
1: आप तो tired नहीं है ना?
3: नहीं नहीं अभी जस्ट ऑफिस से आया हूँ. टायर्ड क्या और काम करने की इच्छा है?
1: हाय हाय हाय जरूर आप जो है या तो HR में हैं या खुद ही बॉस हैं.
3: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है.
1: वेरी नाइस वी नीड सच एंथुजियाज्म. फिलहाल व्हेन वाज द लास्ट टाइम मयंक आप स्टेकेशन पे गए थे अपनी थकान दूर करने के लिए?
2: आई डोंट थिंक आई गोन टू वन.
1: यू हैव नेवर बीन टू अ स्टेकेशन?
2: नो.
1: ये क्या हुआ आपके साथ जो आप इतने दुखी हो?
2: जस्ट इन ऑल दैट डे.
1: कुछ तो हुआ होगा जो इतना एकदम ना कोई उमंग है कटी पतंग है टाइप आप साउंड कर रहे हो.
2: No, nothing of such sort.
1: You definitely need a break, आपकी आवाज से लग रहा है. पंकज जी आप कब गए थे स्टेकेशन पे?
3: जी आई थिंक 2 ईयर बैक ओनली.
1: अरे आपने भी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है. क्यों? दो साल से

0: का स्टेकेशन पैसे बचा रहे हो?
1: नो नो नो नॉट लाइक दैट
0: तो फिर
1: समहाउ
0: चलो जी, गिविंग यू बोथ अ चांस. वैसे जिस हिसाब से मयंक थके हुए हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो फटाफट जवाब दे पाएंगे. पंकज जी, आपका चांस है. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू वर्ड्स. दीज आर वर्ड्स रिलेटेड टू अ वेकेशन, टू समर, टू स्टेकेशन. मिसिंग वर्ड्स को फिल करके वर्ड पहचानना है, ठीक है?
1: जी जी,
0: समझ गए मयंक जी? आपने समझ लिया है?
1: Yeah.
0: फिल इन द ब्लैंक से बेसिकली गेस करना है वर्ड, बट जवाब देने के लिए पहले आप बोलेंगे बिग पंकज, बिग मयंक, एंड देन आई विल आस्क यू टू आंसर. अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आप स्ट्रेट अप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, इट्स टाइम फॉर द बिग समर सरप्राइजेस.
2: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: आपका वर्ड है SU-H-T. SU-H-T. गर्मी से बचने के लिए इसे सर में पहनते हैं, जिसे सर पे धूप नहीं लगती है. वाओ, दोनों को ही नहीं पता. सन हैट.
1: सन हैट.
0: चलिए, दूसरा वर्ड आपके लिए है W-V-. W-V-.
1: बिग पंकज.
0: हाँ जी.
1: वेव.
0: बिल्कुल सही जवाब. चलो जी, खाता तो खुला, एक जवाब पंकज जी ने दिया है. मयंक आप हो ना?
1: या.
0: ओके, वाओ. मूविंग ऑन. SAN-. SAN-, ये समुद्र के किनारे मिलता है, इसमें लोग जो है शेल्स भी ढूंढते हैं. बिग मनोज.
1: बिग मयंक.
0: अपना नाम ही भूल गए. हाँ जी.
1: सैंड.
0: सैंड इज द राइट आंसर. आपसे कोई जबरदस्ती तो ये गेम नहीं खिलवा रहा है ना मयंक? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ चल रही है पीछे. बिग मनोज बोल दिया इन्होंने. 1-1 हो गया है, तो ये टाई ब्रेकर हो सकता है. तो पंकज और मयंक, ऑल द वेरी बेस्ट. SU-SE-. SU-SE-.
1: बिग मयंक. सनसेट.
0: सनसेट इज द राइट आंसर. मयंक, ये क्या हो गया? Congratulations, आप हो गए shortlist.
1: Wow, thank you.
0: Wow. साथ में आपने जीते हैं open movie tickets and F&B vouchers. अब तो खुश हो जाओ मयंक.
1: That lifted my spirit, thank you.
0: It doesn't sound like that. I think there is either someone behind you who's forced you to play this game. I have a very strong feeling. Pankaj ji, don't worry, you can still try. No. And keep sure. Sending us WhatsApps. And Mayank, करो यार, कुछ करो.
1: ठीक
0: है, चलो बाय
1: बाय.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: हेलो,
1: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना। हेलो, सुन रहे हो ना?
2: हे पठाठा बड़ा है, दिल नहीं दे।

0: ऑफ बॉलीवुड।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 8:30 बजने वाले हैं, फिर भी बाहर का तापमान इस 34 फील्स लाइक 42। फिलहाल लो जाएगा अराउंड 32, प्रीटी ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी 63% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And इसी के साथ time for me now to say bye bye. मैं आपसे मिलूंगी अब कल. I keep you company here 5 से 9. Once again reminding you, Mercury retrograde चल रहा है, तो don't ask why me, just say try me. I'm not going to give you any reaction. होता है चीजें जो हैं थोड़ी इधर उधर होती हैं when it comes to communication, when it comes to gadgets. जैसे आज मेरी washing machine फिर खराब हो गई. 2 हफ्ते पहले मैंने ठीक कराई थी, but I'm blaming it on the retrograde. इसमें मेरा या जिसने ठीक करी उसका कोई भी योगदान, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है. एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग वंस द रेट्रोग्रेड इज ओवर ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी. तो मैं इतनी टेंशन ले नहीं रही हूँ फिलहाल. अगर आपने जीतना है बहुत कुछ एंड यू डोंट गेट द टाइम टू पार्टिसिपेट हियर, देन यू कैन हेड टू माई इंस्टाग्राम पेज स्पेशली फॉर द बिग समर सरप्राइजेस. अगर आप स्टेकेशन पे जाना चाहते हो 106.2 बिग एफएम इट इज, सो जस्ट गो देयर, फॉलो अस एंड पार्टिसिपेट. योर चांस टू विन दिस बिग समर सरप्राइज देयर इज वेल. यू कैन से हाई टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग एंड आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो. जाते जाते लीविंग यू विद आई थिंक वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट मूवीज. मैंने इस वीकेंड फिर से देखी धुरंधर 2. ये मैं तीसरी बार देख रही हूँ. या आदित्य धर की सबसे बड़ी फैन शायद मैं.

0: Thank you. Thank you. I would like to introduce my friend and a great musician, Ashwin, over here. Ashwin खुद बहुत अच्छे कंपोजर हैं. इन्होंने एक मराठी फिल्म का म्यूज़िक किया है, मैंने सुना है, और डॉक्टर एन राजम के शागिर्द हैं. और अगेन दोबारा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने अश्विन. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू.
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।